0: warm carrot juice every day for a year. You could give that a try.
1: It's best to get a gammy eye checked by an expert. That's why Specsavers can help treat eye problems in every store. Should have gone to
2: Unwanted Advice.
1: Savers. Conditions apply.
3: दावत एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती आपके लिए लाए हैं £2,000 का हॉलिडे जीतने का मौका साथ में £150 के वन फॉर ऑल रेस्टोरेंट वाउचर्स अभी एंटर कीजिए एट winwithdawat.com या फिर इसका QR कोड आपको जहां भी नजर आए उसे स्कैन कीजिए दिस कॉम्पिटिशन रन्स फ्रॉम 6th मई टू 6th अगस्त यू मस्ट बी 18 और ओवर टू एंटर विद वन एंट्री पर हाउसहोल्ड टीज एंड सीज अप्लाई विजिट winwithdawat.com और याद रखिए राइस इजंट जस्ट राइस अंटिल यू ट्राइड Dawat Extra Long Basmati.
4: With Little Plus, say yes to celebrating the best bits of British summer. And enjoy 20% off a selected range of tender burgers perfect for barbecue weather. We've got everything you need to make the nice weather a little bit nicer. Lidl, more to value.
5: 18 plus GB only while stocks last. T's and C's apply. See lidl.co.uk/lptv. Offer ends 27th of May.

0: hotel.co.uk today.
1: हिमालय कार्पेट्स की मेगा बैंक हॉलीडे सेल शुरू हो चुकी है. 500 से ज्यादा कार्पेट रोल्स 30% तक रिड्यूस्ड. तमाम रूम साइज रेमिनेंट्स पर अप टू 40% ऑफ. वाइनल्स और रग्स सब पर रिडक्शंस. हिमालय कार्पेट्स की बैंक हॉलीडे सेल इज नाउ ऑन. साउथ हॉल ब्रांच में तशरीफ लाइए या विजिट हिमालय कार्पेट्स.com.

0: Holds 30% tak reduced. Tamam room size remnants per up to 40% off. Vinyls or rugs, super reductions. Himalaya Carpets ki bank holiday sale is now on. South Hall branch mein tashreef laiye ya visit himalayacarpets.com.
1: Himalayan Carpets for lower prices. Himalayan Carpets.
2: जी सिनेमा पर देखिए मेगा डबल प्रीमियर दे दे प्यार दे टू स्टारिंग अजय देवगन एंड रकुल प्रीत सिंह.
3: तूने बता दिया ना सब घर पे?
4: कोर्स बता दिया.
5: थोड़ा बड़ा है मुझसे एंड ही इज डिवोर्स्ड. सो
6: कैसी बातें कर रहे हो बेटा?
7: मुझसे 1.5 साल छोटा है आदमी. कुत्ता साला.
2: देखिए मेगा डबल प्रीमियर दे दे प्यार दे टू रविवार 24 मई शाम 6 बजे UK और 7 बजे CET आपके अपने जी सिनेमा पर. अवेलेबल ऑन Sky 708, Sky Glass 713, Virgin Media 810, BT 395.
8: Shabnam Sahi on Sunrise with India's Best Dancer on Sony TV. Nothing beats the feeling you get when dancing. So, when you feel like dancing, dance. The stage is set. The dancers are ready. Are you? India's Best Dancer Season 5. Coming soon on Sony TV.
9: This is the UK's biggest Asian mix.

0: सरताजी? वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: Happy foods.
1: My mum started cooking with khanam ghee in the 70s. Dal makhani, butter chicken, these have been my family's favorite dishes. Using khanam ghee for 3 generations. The aroma, that creamy melt in your mouth. Satisfying taste. Ah, now my kids insist I use this superfood for their eggs and lamb chops.
2: Mom, is the dinner ready? As I can smell the khanam ghee.
1: Khanam ghee. The legacy lives on.
3: Khanam Ghee, a brand from SOP International. Available at all major supermarkets and your trusted local Asian supermarkets.
4: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
5: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रैजिक होती है।
6: From the makers of Rocky और Rani की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming to cinemas on May 22nd.
7: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
8: हिमालय कार्पेट्स की मेगा बैंक हॉलीडे सेल शुरू हो चुकी है. 500 से ज्यादा कार्पेट रोल्स 30% तक रिड्यूस्ड. तमाम रूम साइज रेमिनेंट्स पर अप टू 40% ऑफ. वाइनल्स और रग्स सब पर रिडक्शंस. हिमालय कार्पेट्स की बैंक हॉलीडे सेल इज नाउ ऑन. साउथ हॉल ब्रांच में तशरीफ लाइए या विजिट himalayacarpets.com.
9: जी सिनेमा पर देखिए मेगा डबल प्रीमियर दे दे प्यार दे 2 स्टारिंग अजय देवगन एंड रकुल प्रीत सिंह.
10: तूने बता दिया ना सब घर पे?
11: कोर्स बता दिया.
12: थोड़ा बड़ा है मुझसे एंड ही इज डिवोर्स्ड. सो
11: कैसी बातें कर रहे हो बेटा?
13: मुझसे 1.5 साल छोटा है आदमी. टुटा साला.
9: देखिए मेगा डबल प्रीमियर दे दे प्यार दे 2 रविवार 24 मई शाम 6 बजे UK और 7 बजे CET आपके अपने जी सिनेमा पर. अवेलेबल ऑन Sky 708, Sky Glass 713, Virgin Media 810, BT395.
14: Friday nights on Sunrise, brought to you by ZTV's Tum Se Tum Tak. Daily at 8:30 PM on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
3: This is Sunrise, the UK's biggest.

साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।